कर रूह को नूरे तक्वा से तू शाद कर, नफ्स दुश्मन है दुश्मन को नाशाद कर, दिल को नूरे खुदा से तू आबाद कर।

मालिक से उठ कर के फरियाद कर, दिल को सजदे में रो रो के आबाद कर। रूह को नूर तक्वा से तू शाद कर, नफ्स दुश्मन है दुश्मन को नाशाद कर। हम्द से इस जुबां को तू हम्माद कर, हम्द से इस जुबां को तो हम्माद कर। सर को चौकट पे उनकी तू सज्जाद कर। हम्द से इस जुबां को तो हम्माद कर, सर को चौखट पे उनकी तू सज्जाद कर। अपने मालिक से उठ कर के फरियाद कर, दिल को सजदे में रो रो के आबाद कर। अपने मालिक से उठ कर के फरियाद कर, दिल को सजदे में रो रो के आबाद कर। अल्लाह तबारक व तआला मस्ट बिकम प्लीज्ड विद अस, मस्ट मेक अस हिज, एंड ही मस्ट बिकम आवर्स, देन ऑल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड। अल्लाह अल्लाह कैसा प्यारा नाम है, आशिकों का मीना और जाम है। अल्लाह अल्लाह कैसा प्यारा नाम है,

मुझको जीने का सहारा चाहिए, गम तुम्हारा दिल हमारा चाहिए। बहरे उल्फत का

अब जैसे भी है तेरे बंदे हैं, तुझे छोड़ के हम गंदे जाए कहा। डोंट डिप्राइव अस ऑफ द शफात ऑफ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिकॉज ऑफ आवर एक्शंस आवर डीड्स, हमारी खबासत, हमारी नजासत, हमारी गिलाजत की वजह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात से महरूम मत फरमा। विद मुबारक हैंड्स ऑफ रहमतुल लिल आलमीन, विद मुबारक हैंड्स ऑफ रहमतुल लिल आलमीन, bless us with Jame Kauthar. After which there will be no thirst on the day of Qiyamah. Without any reckoning enters into Jannat. Cross us over Pulsirat like lightning. Protect us from the azab of Qabr, azab of Hashar. Bless us with your Didar in Jannat. Jannat, my beloved Allah, bless us with sight on your countenance, when the veils will be removed, when the veils of Noor will be removed. Ey Rabbe Kareem, make us amongst those who will be able to see you like how we see the full moon in this world.

एक दिन मरना है, आखिर मौत है. डोंट लेट द एंजल ऑफ डेथ फाइंड अस इन एनी काइंड ऑफ हराम. तमन्ना है कि गुलजारे मदीना अब वतन होता, वहां के गुलशनों में कोई अपना भी चमन होता. बसर अब जिंदगी अपनी दियारे कुद्स में होती, वहीं जीता वहीं मरता वहीं गोरों कफन होता.